धन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब राज तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निब निबलागा तेरी पाई कार कमावा जे तोद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू देह सोई सुख सहना जिथ रख है बैकुंठ ते थाई तू सबना के प्रत पाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्राह्म प्रभ मेघ बठाया जल थल मही अल दह दिस बरसाया सांत पई सांत पई गुजी साब त्रिसना अणद भया सब ठाई जियो सुख दाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप ब्रत पाले पाए पैरी ते सहम नाई जियो जाकी शरण पया गात पाई है सास सास हर नाम ते आई है ते सब

भय प्राप्त उठे गुर पूरे के चरण मन बुठे। सहज समाध लगी लेव अंतर सोरस सोई जाने जियो अगम्य गोचर साहिब मेरा घाट घट अंतर वरते नेरा। सदा अलिपत जिया का दात को बिरला आप पछाणे जियो प्रभ मिलने किए। हनी साणी मान इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिप

दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाहे आ जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहे आ जियो जो के छ करे सो आपे आपै बुद्ध सियाण बिकिशु न जापै।

रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मनपति आवणिया हाउ वारी जियो वारी साबद सोहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया रहाओ ना को मेरा हाउ किसकेरा सच्चा साचा ठाकुर त्रि भावन मेरा हाउ मैं कर कर जाय कनेरी कार अवगन पछो तावणिया हुक्म बिछाणै सो हर गुण वखाणै गोर कै साबद नाम नीसाण सबना का दार लेखा सच्चा छूट छूट स नाम सुहावणिया मनमुख भूला ठौर न पाए।

आपे वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै आपे लाई लाए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया जिसे आप भुलाए सो किथै हाथ पाए पूर्व लिखिया सो मेटणा ना जाय जेन सतगुर मिलिया सेवड़ भागी पूरा कर्म मिला बनिया पेयड़ै धन आन दिन सुती कंत विसारी अवगुण मुती अन दिन सदा फिर बिलला दीपेर बेन पिर नीद ना पावणिया पेयड़ै सुखदाता जाता होमै मार गुर शब्द पछाता से सुहावी सदा पेर रावे सच सी गार बना बनया लख चौरासी हजी उपाय जिसनु नदर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख काट सदा जान निर्मल दर सच्चै नाम सुहावणिया।

चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणे सिमरत सासत वेद बखाणे परमे भूला तातो न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणे आप करे किसे आखे कोई आखण जाइए जे भूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणे माज महला तीजा आपे रंगे सहज सुभाए गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाए

अमृत सब भुख लह जावणिया। माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुभाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए। अमृत तीसरा त्रिपतासे कर कृपा तृष्णा बुझ।

जय पाए दुख पावणे अज संयंत्र प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वास सच संजम जुगता गुर कै साबद सदा हर ध्याए एह भगत हर पावणे गुरमुख भागत जुग चारे होई होरत भगत न पाए कोई नानक नाम व नानक नाम गुर भगती पाई गोर चरणी चितुला बनया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सा लाही सच्चा नाए दुख कब ही नाही।

मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया, काम क्रोध पसरिया संसारे, आए जाए दुख पावने आप, तेस विच ज्ञान रतन एक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जेत जात सात संयम।

पावंदा कांत हार तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटाल पदार्थ पाया पह पंजन की शरण आया, लाए अंचल नानक तारियन जिता जन्म पार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवा घर तीजा। हार जप जपे मन धीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पहदूरे। सारन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे। चरण सेव संत साध के सकल मनोरथ पूरे, घट घट एक वरतदा दल थल महील पूरे। पाप बिना संसेव्या पवित्र संतन की धूरे, सब छड़ाई खसम आप। हर जब पही ठरूरे करत की अत पाव सो दोस्त मुए, होय मूरे नानक रत्ता सच नाए। हर देख हर वेखै सदा हजूरे, बार है माहा माज महला पंजवा घर चौथा। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंड दै दिस भ्रमे था काय प्रभु की साम। तेन दुदै ते बाहरी कित न आवै काम, जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम। हर नाह न मिली है सज नैन कद पाई है विश्राम, जित घर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। सर्व सीगर तंबोल रास सन देही सब खाम, प्रभु स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजा नाम, हर मिलो स्वामी संग प्रभु जिसका निःचल धाम। चेत गोविंद अराधिया होवे आनंद कणा, संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभु अपना आए तिसे गणा, एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल सल महील पूरिया रविया विच वणा, सो प्रभु चित ना आवे कितला दुख गणा। जनी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दसन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा, वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तोह, पुत्र गलत ना संगत ना हर अविनाशी ओह। परच परच सगली मोही झूठै तंदै मोह, एक

प्रभु मिलहु प्राप्त होए, वह साख सुहावा तां लगै, जब संत भेटै हर सोए। हर जेठ जुणंदा लोड़ीऐ, जिस अगै सब निवन, हर सज्जन दावन लगिया किसै ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभु।

मया हर राय। कत्तक कर्म कमावणे दोसना काहू जोग, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सबे रोग। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया पहोग। विच न कोई कर सकै किस थैरो वह रोज, कीता किछु न होवई लिखिया तुर संजोग। बट भागी मेरा प्रभु मिलै ता उतरै सब योग। नानक प्रभु राख लेह मेरे साहिब बंदी मोच। कत्तक होवै सार संग विनसै सबे मोच, मंगिर माहि सहंदिया हार पेर संग बैठड़िया। तिन की सोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया, तान मन मोलिया राम सियो संग साध सहेलड़िया। साधना ते बाहरी

नानक पांचै तुहड़ तेन प्रभ सरणी हर दार पड़िया मंगिर प्रभ आराधना बहुड़ना जन्मड़िया पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाहु मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहु ओढ़ गोविंद गोपाल दाए सेवा स्वामी लाहु बिख्या मो बिख्या पोह न सके मिल साधु गुण गाव जहते उपजी तह मिली सच्ची प्री समाह कर गहलिनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछड़िया बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम गाहो सरम पई नारायण नानक दार पईया हो पोख सुहंदा सर्व सोखा जिस बखसे वे परवाह माघ मजन संग साधु धूड़ी कर स्नान हर का नाम त्याय सुन सब नानो कर दान जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाय गुमान काम क्रोध न मोही है बिन सह लोभ समान सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान अड़सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान जिसनु देवै दया कर सोई पुरख सुजान जना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरबान फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत साई राम के कर कृपा दिया मिलाए से सुहावी सर्व सुख हुन दुखा नाही जाए एच पुन्नी बड़ पागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जेहा अवर न दिसे कोई दूजा लवे न लाए हलत पलत सवारे उन निहचल दित्तियां जाए संसार सागर ते रखे अन बहुण न जन्मै ताए जेहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नेत सलाहिय जिसनो तिल न तमाए जिन जिन नाम त्याया तिन के काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे सर्ब सुखा निध चरण हार पौजल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाह जरे कूड़ गए दुबिधा नसी पूरन सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे माह दिवस मूर्त भले जिस

एवकांत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुद दूजा खेल रचाया, हम सर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया, जो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया, एक ना बख्शै मेल लह गुरमति तुदै लाया, एक खड़े करे तेरी चाकरी मिणनावै होर ना पाया, होर कार बेकार है एक सच्ची कार है लाया, पुत कलात कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया, ओह अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चा ना समाया। श्लोक महला पहला। सुनने कै प्रभु गुफा करी कै प्राणी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी उर्द रहा सिर पहार, पोर कर काया कपड़ पहरा तुहवा सदाकार, बग्गा रता पियला काला बेदा करी पुकार, होय कुचील रहा मल धारी दुरमत मत बेकार, ना हो ना मैं ना हो होवा, नानक शब्द विचार महला पहला। वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै, अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरो मल मल धोवै, अंधा भूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने, हमें विच दुख खाले नानक गुरमुख हमें टुटै ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावै। पौड़ी पौड़ी काया।

एक भगवा वेशकार फिर है जोगी सन्यासा। अंदर तिसना बहुत साधन भोजन की आसा, अमृता जन्म गवाए न गृही न उदासा, जमकार सिरो न उतरे त्रिविद मनसा, गुरमती काल न आवे नेड़े जा हो वै दासन दासा, सचा शब्द सच मन कर ही माए उदासा, नानक सतगुर सेव ने अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा हो पलीत, जो रत पी वह मानसा, तिन को निर्मल चीत, नानक नाव खुदायका, दिल हछे मुख लेह, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। महला पहला। जा हो नाही ता क्या आखा, क्यों नाही क्या होवा, कीता करना कहया कथना, परिया पर धोवा, आपन बुझा लोक बुझाई, ऐसा आगू होवा, नानक अंधा होए कह दसे राह, सब स मुहाए साथ है, अग्गे गया मोहे मोहे पाहे, सो ऐसा आगू जा

बोला जे समझाई है, पढ़ी है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखी है दीवे बलहे पचास, चौने सोए ना पाई है चुन चुन कावे खास, लोहा मारन पाई है टहे ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। कैहा चंदन टुटै सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटै पतार, पुतनी गंढ पवै संसार, राजा मंगै दित्तै गंढ पाए, भुखिया गंढ पवै जागाए, काला गंढ नदिया मीह झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदा गंढ बोले सच कोए, मोया गंढ नेकी सत होए, एद गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मोह मार, नानक आखै एहो बीचार, सिफती गंढ पवै दरबार पौड़ी, आपे कुदरत साज गए आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगह सुटी है, केस अग्गै करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोटे हो खरे करे शब्द सुवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बखसे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसायका राया, मेर वैद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही। महला पहला। ना देव दान वाला ना सिद्ध साधका तरहा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई। महला पहला। ना दादे देहंद आदमी ना सप्त जेर जमी, अस्त एक दिगार कोई एक तुई। महला पहला। ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन थिर ना कोई एक तुई। महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आवसे, हमारा एक आस बसे, अस्त एक डिगर कोई एक तुई। महला पहला। परंदे ना गिराह जार दरख्त आब आस कर, दिहंद सोई एक तुई। महला पहला। नानक ललार लिखिया सोई, मेड न साके कोई, कला तरह हिरै सोई एक तुई। पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, शब्द सच्चा शब्द विचार, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मन हुक सदा कूड़े यार भरम भुलाणिया, विस्टा अंदर वास साधना जानिया, बिन नावे दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला। सीहा बाजा चरगा कुहिया एना खवाले, काह खान तिना मास खवाले, एह चलाए राह, नदिया विच टिब्बे दे खाले थली करे असगाह, कीड़ा थाप दे पातशाही लस्कर करे स्वाह, जेते जी जी वह लै साहा, जी वाले ताके असाह, नानक ज्यो ज्यो सच्चे पहवै त्यो त्यो दे ग्राह। महला पहला। एक मासाहारी एक तृण खाहे, एक ना छत्ती अमृत पाहे, एक मिटिया मह मिटिया खाहे, एक पौन सुमारी पौन सुमार, एक निरंकारी नाम आधार, जीवे दाता मरे ना कोई, नानक मुठे जाहि नाही मन सोए पौड़ी, पूरे गुर के कार कर्म कमाईया, गुरमती आप गवाए नाम तिहाईया, दूजी कार है लाग जन्म गवाईया, बिन नावे सब वेस बैजे खाईया, सच्चा सब सलाहे सच समाईया, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आईया दुनिया खोटी रास कूट कमाईया, नानक सच खरा सलाहे पातशाह जाईया। श्लोक महला पहला। तुद पावे ता गावावे गावे, तुद पावे जल नावे, जा तुद पावे ता करे बेपूता सिंगी नाद बजावे, जा तुद पावे ता पड़े कतेबा मुला सिख कहावे, जा तुद पावे ता होवे राजे रास कास बहुत कमावे, जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे, जा तुद पावे जा जसंतर सुन गल्ला कर आवे, जा तुद पावे नाए रचावे, तुद पाणे तू पावे नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला। जा तू वड्डा सब वडे आईया, चंगा चंगा होई, जा तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तहाज, हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेव संग परम चुकाई है, सतगुर आखे कार सुकार कमाई है, सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सुसार गुरमुख पाई है, मरम कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चमाई है, सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सच्चा सच्चियार सच समाई है। श्लोक महला पहला। काल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया, हौ पहल विकुन्नी होई, आदि रह राह न कोई, विच हमें कर दुख रोई, कहो नानक किन वेद गात होई। महला तीजा। काल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनों नदर करे तिस देवै नान, गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी, भगता तै सह सारिया,
ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲੇਨ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਏ ਹਨ ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੇਖ ਖਾਇਆ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਸ ਵਧਾਇਆ ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚੱਕਰੀ ਜਿਨਾ ਅਨੰਦ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਦਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਤਿਹਾਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਤ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੋਏ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੀਜੇ ਮੋਹੇ ਗਰਾਹ ਭੁੱਖ ਤਿਖਾ ਦੋਏ ਪੱਕੀਆ ਖਾਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਹ ਪੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਚੌਥੇ ਆਈ ਊਂਗ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ ਪੀ ਉਠ ਰਚੇ ਓਨ ਵਾਦ ਸੈਵਰਿਆ ਕੀ ਪੇੜ ਪੱਧੀ ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਪਾਉ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚਾ ਨਾਵਨ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹਜ ਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਟੀਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਇਕ ਤੈ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾ ਹੀ ਤੋਲ ਪੌੜੀ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਧੰਦੇ ਚੋਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੇਤ ਕਠੋਰ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਜੇਤ ਘੜ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਏ ਸੋ ਭੰਨ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿਉ ਕਰ ਪੂਰੇ ਵੱਟ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖਿਆ ਘੱਟ ਹਮੇ ਜਾਈਏ ਲਈਨ ਖਰੇ ਪਰਖ ਦਰ ਵੀ ਨਾਈ ਹੈ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ ਭਾਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹ ਯਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜਾ ਚਾਉ ਤਿਨਾ ਦਰੀਆ ਵਾ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਮਾਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਓ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਓ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁਣ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀ ਹੈ ਖਰੇ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸ ਬੁਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਨ ਸਰਾਧ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ

जेवा इंद्री एक स्वाओ जस्ट विकारी ना ही पाहो पहाओ जस्ट विकारी नहीं पाहो पहाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहे मान दोए चर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा व्यवहार ठाके बोहित ठाके बोहित दरगह मार साचा लाही धन गुरुद्वार नानक दर कारी कंकार गौड़ी महला पहला उल्टियो कमल ब्रह्म विचार अमृत हर गगन दास द्वार त्रिभुवन बेदया आमरार रे मन मेरे परुना की जय मन माने अमृत रस बीज रहाओ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मान मन ते जानिया नाजर पही कार कार ते जान्या जर सर तीर्थ मजन नाम अधिक विथार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनाओ तो पार कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नान गुरमत सह समाओ गौड़ी महला पहला सतगुरु मिलै सो मरण दिखाए मरण रहन रस अमृत पाए गर्भ निवार गगन पुरब पोर पाए मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जाप जाप रहन हर सरना रहाओ सतगुर मिलै तो दुबदा पागे कमल विकास मान हर प्रभ लागे जीवित मरै महारस आगे सतगुर मिले सच संजम सूचा हर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा कर्म मिलै जामका पहमूचा गुर मिली है गुर मिलया मल अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हमे मार मिलाया गौड़ी महला पहला किरत पया नह मेटा कोय क्या जाना क्या गय होए जो तिस बहाना सोई हुआ वरना करने वाला दुआ ना जाना कर्म केवड़ तेरी दाद कर्म धर्म तेरे नहीं जात रहाओ कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार तोड़ना ही तुद भगत भंडार किया गर्म ना आवे रास जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जिवाल है बख्श मिलाए जो पहा ज्यो भावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साजा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तान मह मैल ना ही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहे जिन अकथ कहाया अप्यो पियाया आन पह विसरे नाम समाया क्या डरिया डर डर समाना पूरे गुर कह शब्द पछाना रहा जिस नर राम हृदय रास जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले साबास जाय सवारे साज बयाल एत उदमान हुबा दे काल एह नेस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म रह त्रै गुण हितकार चारे वेद कथै आकार तीन अवस्था कहया वख्यान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान तीन अवस्था कह है वख्यान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुत जन्म ना होए है मरण रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सास पंडित मुख सोई बेन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जाग हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माह निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एह संसारो लाभ लोभ मुझ कूड़ कमावे बहुत उठावे पारो तू काया मैं रुलती देखी ज्यो तर ऊपर छारो सुन सुन सिख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुना वे बारी रहाओ हो तद तो आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तुवारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बरियारी हंस तलिया तू पिछे रही है छूटे हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा कचलिया ता मन भला पाया हलतना सोभा पलतना ढोई अहला जन्म गवाया

0: लाभ लोभ की तावसता जब निरंजन।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: औखद मंत्र मूल मन एक है जेकर दृढ़ चेत कीजै रे, जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा लीजै रे। मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समावे अलख न लखना जाई रे। रहाओ शक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे। रात अनेरी सूझ सुनाही, लाज टूक समूसा पाही रे। मन मुकरे तेता दुख लागे, गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई होवा, कीर्तन मेटिया जाई रे।

हाव केते रोख बिरख हम चीने केते पशु उपाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तुझते कहा छपावे तर तीर्थ हाम नाव खंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लग।

डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरागन महला पहला, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछे पछता हिरे रहाओ, अनता तन तरणी तरे अनत ना चाहया जाए, अनत को चाहन जोगे सो आए अनत गवाए, आपन लिया जे मिले ता सब को भागट होए, कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोय, नानक करना जिन किया सोई, सार करे हुक्म ना जापी खसम का किसै वडाई दे। गौड़ी बैरागन महला पहला, हारणी होवा बनबसा कंद मूल चुन खाओ, गुर प्रसादी मेरा सौ मिलै वार वार हो जाओ, जियो मैं बनजारन राम के तेरा नाम वखर वापार जी रहाओ, कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार, सहज सुभाए मेरा सौ मिलै दर्शन रूप अपार, मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार, और वार पार मेरा सौ वसै हो मिलाओगी बह पसार, नागन होवा तर बसा शब्द वसै पहु जाए, नानक सदा सुहागणी जन ज्योति जोर समाए। कौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखीए करते का होए बीचारो, तित कर गावहो सोहिला सिवर हो सिरजन हारो, तुम गावहो मेरे निरपहो का सोहिला हो वारी जाओ, जेत सोहिला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जेड़े समाली अना देखेगा देवन हार, तेरे दान कीमत ना पवै तिसदाते कवन सुमार,

जीवै दाता दे बनहार हर नानक हर नामे लगा प्यार गौड़ी गुआरेरी महला तीजा।

जप है हर सारंग पाणी नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी गौड़ी गुआरे री महला तीजा सतगुर मिले वडभाग संजोग हिरदय नाम नित हर रस भोग गुरमुख प्राणी हर नाम हर त्याए जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा ते कना बिरला चख डीठा कर्म कांड बहु करै आचार बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बाध्य माया फास जन नानक छूटै गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मधे पानी नाही जैसे धरती मधे पानी परगासिया बिन पगा वरसत फिराही बाबा तू ऐसे भरम चुकाही जो किश करत है सोई कोई है रेत ऐसे जाय समाही रहा स्त्री पुरख होए कै क्या ओए कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तुझी माहे समाही इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही जा का कार्ज सोई पर जाना है जे गुर का शब्द समाही तेरा शब्द तू है तेरा शब्द तू है।

मन मुख मिला सजाए मेरे मन गुर चरणी चित लाए गुरमुख नाम निधान लाए दरगह लाए छाए रहाओ लख चौरासी ही भरम दे मन हट जावै जाए गुरका शब्द न चीने फिर जोनी पाए गुरमुख पछाणिया हर नाम वस्या मन आए अन दिन भक्ति रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरै प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नान करमी पाईयन हरनामा भगत भंडार कौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पे वकड़ै गुण संभलै सहुरै वास पाया गुरमुख सह समाणिया हर हर नाम हर हर मन पाया ससुरै पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाइया आप निरंजन अलख है आपे मेल आइया रहाओ आपे ही प्रभ देहे मत हर नाम ते आइया वडभागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाइया होमै दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाइया सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाइया मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाणे सतगुर सेवा ना करहै फिर पछताणे गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते एवै भावदा मन मुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया।

गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा शिव सख्त मिटाइया चूका अंधियारा तोर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईया संत जनहो जिस देखो जीवा हार बिन चसा न जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहो हो हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुरदे पाया मेरा मन तन लीनी धन धन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुरते हर पाया।

जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली और आखा चीत पीछे बेच बचरे नित हरदा सार संभाली त्यो सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर रख गुर सिख रख जिया नाली जैसे काती तीस बत्तीस है विच रख रसना मास रत केरी कोई जानो मास काती कह कशहात है सब वसगत है हर केरी त्यो संत जना की नर निंदा कर है हर रख पै जन केरी भाई मत कोई जान हां किसी का एक शहात है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर का वास है कोई लाग ना सके बिन हर का लाया

मन होए आनंद सो सतगुर कहिया मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिया मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले खाओ खेन खेन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिला रहाओ कार कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इश पुनीजन केरिया ले सतगुर धूरा हर भगत रड़ावे हर भगत सुनै जिस सतगुर तिस सतगुर मिलिया तोटा मूला आवई हर लाभ नित दृढ़िया जिस

रसक रसक हर रस आगाने फिर बहुर न भूख लगावै कोई करा उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावै जन नानका हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै गौड़ी पूरा गौड़ी मां ज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा गुरजोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गोर हर रंग रतड़ा सदा निर्माणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सो जानी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आव संतो मिल नाम जपाहा वि संगत नाम सदा लैलाहा जियो हर के कर सेवा संत अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लखेड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह के अगड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतना गौड़ी मां ज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करिया जियो मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो गुरदीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर टुटै ढोल ढोल मिलिया जियो मेरा मन तन प्रेम लगार ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुरु।

सतगुर प्रसाद किन बिद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाई हर नाम सहाई रहाओ कुशल नंग रहे मेरी समाया उच्चे मंदिर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती घोड़े देख विगासा लश्कर जोड़े नेव खवासा गल जेवड़ी हम मैं के फासा राज कमावे दह दिस सारी माणा रंग भोग बौनारी ज्यो सर्प ज्यो नरपत सुमना पेखारी एक कुशल मोह कहो सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर क्या भगता पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाई यो पाई हर नाम सहाई रहो दूजा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा क्यों भ्रमिया भ्रम किसका होई जा जल तल मईर रविया सोई गुरमुख उभरे मन मुख पत कोई जिस राख आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुचन हर रहो समय वरता एक अनंता जा ता तू सुख सो होई अचिंता ओ सब किश जाना जो वरतंता मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवै नित बहु जोनी पवै धुर किरत लखियासा जैसा बीजा तैसा खासा देख दर्शमन पाया विगासा सब न

सब काहू मंगना सब किस तेरा तू करना हार अंत नहीं किस पारा बार दास अपने कहो दीजा दार कहु न विसरा नानक नाम गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अनक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाण पयागल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगह शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझन लागा ताता चोला रहाओ ग्यो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे।

उस खेत कारण राखा कड़ाया, तिसका पाला कछु न पड़ा। जिसका राज तसा का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, या बिना आपे करे रास। नानक प्रभु आगे अरदास।

सोई मोहे करना जापे खोता तुम बसना निरपो नाम जपो तेरा रसना तू मेरी नाम निद तू भंडार रंग रसा तू मना आधार तू मेरी शोभा तुम संगरचिया तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया मन तन यंत्र तुही ते आया मरम तुम्हारा गुरते पाया सतगुर ते दृढ़िया।

श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा साद, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रह, सावत वस्तु वस्त ओ अपनी लह, रहा सकल सहेली अपना रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मुसन हार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। हुन तेरा कै भावना माई, हुन तेरा कै मीत न पाई, सर्ब दया सर्ब दर्ब सियाणप ना ओहिरा ते, साध संग ओहि दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहि सारंग पाण, संतन तूर सर्व।

जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, जो देख रहे है उसका भी करता है। इसन थोड़ी जी गहराई ना लेना, करते पुरख की जड़ी व्याख्या है। आप दी ग्यातली में अर्ज करा, मैं जपजी साहब का टीका लिखण लगा सी, 16 पौड़िया तक मैं कोई बड़ी मुश्किल 2.5-3 साल च लिख सकिया। जद इस छपवाण का ख्याल आया ते मैं इस जद पढ़िया ते ऐसा प्रतीत होया सब गलत ठीक नहीं है। तो छपवा के की करिए, अद्धा है ही सब गलत। फिर मेरी एक सोचनी बनी कि 3 साल जो मैं पहले लिखिया सी अज गलत है, किधरे ऐसा तो नहीं अज जो मैं लिखा वो 5 साल बाद गलत हो गए, वो सही ना हो गए। फिर एक सोचनी बन गई, सही कोई लिख ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, कठिन है। कारण करता हो ये सबको काल, सबन को करता, सब कुछ दा करता है। ये जो कहा जाता है ना, साढ़े हाथों च कुछ नहीं, हाथ दा करता भी होई, पैरां दा करता भी होई, अखां दा करता भी होई, लेकिन मनुख दे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, शायद कुछ चीजां दा करता मैं हां। बस इसे करके मनुख दुखी है। कहिंदे ने पशु सारे दे सारे सुखी ने, और ब्रह्म ज्ञानी सारे दे सारे आनंद दे चे ने। अगर दुख लबना होवे तो सिर्फ मनुख दी दुनिया च, और किधरे भी नहीं है, किधरे भी नहीं है। कोई पंछी दुखी नहीं है, कोई पशु दुखी नहीं है, कोई कीड़ा पतंगा दुखी नहीं है। सुअर नो गंदगी दिच देख के सानू तरस आ सकता है, सुअर आनंद दिच है। भी मैरिज करते हैं, किसी बिष्टा दे कीड़े नो देख के सानू दुख हो सकता है, वो बड़े मजे च। सारा पशु जगत सुख दे च है, और तमाम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च ने। दुख केवल मनुख दी दुनिया च, क्यों? एक करता खुद नो मान लेंदा, जदके हमरा किया किछू न होए, कर है राम होए है सोए। ऐसा कहना मेरे हथा दे राही परमात्मा करा रहे है, तो कम से कम हाथ ते मेरे हो गए ना, तो हाथ भी मेरे नहीं। ये कहना किथे तक जो है फबदा है ते चंगा लगदा है, मेरे हथा राही परमात्मा करा रहे है, नहीं वही कर रहे हैं। ये कितने ठीक लगता है कि मेरी जबान नहीं ओ बुला रहे है, नहीं फिर कम से कम जबान तो मेरी हो गई ना, नहीं ओ ही बोल रहे है। मेरे दिमाग रही वही सोच रहे है, तो कम से कम दिमाग तो तेरा हो गया ना, कम से कम इस दिमाग दा करता दे तू हो गया। मेरे राही परमात्मा करा रहे है, तो एक परमात्मा है, एक मेरा है, एक मैं हां, एक परमात्मा है, पर कौन दसे नहीं है तू, तू करता नहीं है, वही है करता। रसना भी उसकी, हथ भी उसके, पैर भी उसके, दिल भी उसका, दिमाग भी उसका। कहिंदे ने संघर्ष है मनुख दी दुनिया च बड़ा भारी, ते मनुख दा किस दे नाल संघर्ष है? कहिंदे मनुख दा परमात्मा नाल ही संघर्ष है, भगवान ते इंसान दी लड़ाई चल रही है। ये भी मैं अर्ज कर रहे हैं, और इस करके मनुख दुखी है, क्योंकि मनुख कितना भी लड़ लवे हारेगा, लाजमी हारेगा, जीत नहीं है इसकी। सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा, सबको काल सवन

धर्म की साधना मन चुप करे अनाहत नाद सुनाई देगा। उस अनाहत नाद विच हजारां तरह का राग है, हजारां तरह के साजां की आवाज है। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे, केते राग परिसों कहीं केते गावण हारे। जद कोई उस अनाहत नाद नु सुन लैंदा है, ओ संगीत नु भी जन्म दे सकदा है, कविता नु भी जन्म दे सकदा है। ओदी कविता अमृतमई बाणी होवेगी, परमात्मा दे बोल होणगे, ओदे अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहत नाद तो आ रही है, ओदा अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हो आपो बोल न जाणदा, ओ कहा सब हुक्म आओ जी, मेरा मन ते चुप कर गया, कुछ कहंदा ही नहीं। फिर इतना तुसी आखे ए प्रभु बोलता है, जैसे मैं आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा विच मुहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए उन्होंने बेगम हजरत खजीजा ने तीन चार कंबल पा देते, लिटाया भी शायद ठंड लग गई है। बैठ गए, उन्हां दी जबान तो कुरान दियां आयतां निकलियां। शायद आपनो पता होवे मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। दो साल दे सन मां गुजर गई, छे साल दे सन प्यो गुजर गया, पाले है चाचे ने अबू तालब ने, यतीम अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ए अर्ज करा, खदीजा मुहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन, ओदा समान लेके दमशक देच, बसरा देच, बगदाद देच जाके बेच दे सन, करबला देच जाके बेच दे सन, पाई पाई दा हिसाब दे दें दे सन। ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर दा रिश्ता फिर पति पत्नी देच बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन, ये रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा विच जाके रात नो अभ्यास कर दे सन। आज उस गुफा तक जो कहंदे ने 14 मील दा रस्ता सी, सऊदी गवर्नमेंट ने टनल बना दिती है, हुण 3 किलोमीटर दा रह गया। सारे उस टनल दे चो लंघ के जांदे ने। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां दा इकट्ठ उथों लंघदा है। उस गुफा तक सारे जांदे ने, उस गुफा नूं सजदा करदे ने। वे इत्थे पहली समाधि मुहम्मद साहब दी लगी सी। जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई, कंबल ते कंबल पाए, खदीजा ने फिर बैठ गए, पसीना भी आ रहा और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चो तरन्नुम ने ये आयतां निकलियां कुरान दिया, दंग रह गई खदीजा। कह लगी, हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं ने, तुसी ध्यान पढ़ो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ, बिल्कुल कावे शैली दे, और तनन्नम दे दंग रह गए। ये बोल थोड़े नहीं ने, मोहम्मद साहब कहंदे ने, हां खदीजा तू ठीक पकड़े है। इस वास्ते इस्लामी जगत च कहंदे ने, पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहंदे सन, सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उत्थों शुरू हुई है। कुछ ते कहंदे ने अकीदत ते भागवत दा संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ ते इत्थे तक कहंदे ने। खैर मुख्तसर बहस करां, ये मसला किसे वक्त फिर रखांगे तुहाडे सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मंनदे ने, ये बोल फड़े नहीं ने, ते मुहम्मद साहब कहंदे ने तू ठीक पकड़े है। मैं ते चुप कर गया, मुहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी, उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावे उथे मैं ब्लैक बोर्ड ते लिखा शब्द देखा सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु तू प्रभु जू तो कै लाज हमारी, नील कंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उथे कह

हर हर कीर्तन नहीं था, कदी कदाई कीर्तन हुंदा है, वो जगह ना दसो मैनू। गुरु अर्जन देव जी, वो जगह दसो जिथे अठे पैर कीर्तन हुंदा है। सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, नीता प्रति हुंदा होवे, मैं उत्थे बैठ के सुना, क्योंकि वो जगह चार्ज होई होवेगी, उस जगह दा अपना असर होवेगा। हजारां मनुखां दा यह अनुभव है, विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब, इत्थे आउंदिआं सानूं सकून मिले, शांति मिली है, भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे, मंजी साहब दी भावें कथा हो रही सी साडे समझ तो परे, पर इत्थे आके शांति मिलती है, सकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे हैं, 24 घंटे कीर्तन हो रहे हैं। चलो समां ते हो गया, पर एक मिनट में थोड़ा लवां। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी, ग्वालियर दी गल है, ते ग्वालियर दा जिहड़ा गुरुद्वारा है उत्थों दे महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी, मस्जिद भी बनाई, मंदिर भी बना के दिता, गुरुद्वारा भी, फौज दे विच उदों सिख हुंदे सन। ये तीन अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने, विचकार मंदिर है, एक पासे मस्जिद है, एक पासे गुरुद्वारा है, तिने एक ही लाइन देच ने, और तिने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने, और उन्हां दे कढ़ाई का काम बड़ा गजबदार है। उत्थे किधरे मैनू गल पूरी कला ते मैं बोल रहा सी, कला हुनर नूं कहिंदे ने, संगीत एक कला है, कविता एक कला है, चित्रकारी कला है, नृत्यकारी कला है, एक कला किन्नी तरह की है। पुराने जमाने च अवतारा नूं नापदे सन इहदे च कला कितनी है, जैसे कहिंदे ने श्री कृष्ण च 16 कला सन, राम दे 14 कला सन, राम नूं छोटा मनदे ने कृष्ण तो, उन्हों संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नूं मनदे ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नूं जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता है, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते, उसे तो कोई कला लेके आ जांदे 16, कोई 4, कोई 6, किसे नूं अंसा अवतार भी कहे, अंश मात्र कला है, बथोड़ी अंश मात्र कला। ते मैं बोल रहा सी ये जिहड़ियां कला आउंदियां ने, एक सियाणा सिंधी वीर मेरे कोल आया, कहण लग गैने जी थानू किले ते ले चलदे आं, थानू कला का एक नमूना दिखांदे आं, जीवदा जागदा, देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी एक कला की कथा सुन के प्रभावित होया, ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना, तुसी समां कढ़ो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, 6वें पातशाह दा स्थान बने हुए, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंना, ते तुसी जद दसो किस वक्त कहिंदे हो मैं चलदा। कहिण लगे ठीक है, फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वह एक मैनू मंदिर च ले गए, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई दे, बड़ी बुलंद चोटी। उस मंदिर दे चले गया ते मैनू कहण लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उते चित्रियां या तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नूं दाद देनी पएगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वह मंदिर देखिया, मैनू कहण लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय, मैं कहा कला दा नमूना वाकई महान है, कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं कहा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहण लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे आ, तुसी इस तरह दा शब्द कहिंदे हो मंदिर बारे मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे कोल सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है बोलदा है, मुर्दे की यह पहचान आउंदी है लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठां पईआं करदीआं ने।

गंदगी इतनी है लगता है साल तो इतने किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दी। कई सिला पत्थर निकलते पे डेरी हो रहे हैं, ना इतने कोई आरती, ना इतने कोई जप, ना इतने कोई धूप दीप, ना कोई इतने मंगलाचरण, ना इतने कोई प्रभु दे गीत, ये बोलता ही नहीं, मुर्दा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया सवारिया होया कि मैंने रखता है नाम बिना जेता व्यवहार ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार में एक बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मंदिर मुर्दा है, जीवदा जागदा मंदिर होता जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरी कीर्तन होवे। मैं कह रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलता है, वो है हरी मंदिर दरबार साहब 24 घंटे बोलता है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नु खतरा है, कबरा नु खतरा नहीं आता, जलदे दीवे नु खतरा है, बुझे दीवे नु खतरा नहीं है, फुल्लां नु खतरा है, कंडिया नु खतरा नहीं आता, जिंदगी नु खतरा आता है, कबरा नु खतरा नहीं आता। 24 घंटे बोलता है, उदे कोल जिंदगी, अगर की होया जो खतरे च रहा इस चक्कर च ना पैना, अबदाली ने गिराया। मसे रंगण ने उस अस्थान की बेइज्जती की, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इथे करो, क्यों? जिंदगी है, बोलता है, जीवन है। डिठे सबे थाओ नहीं तुद जेव्या, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया। अंदाजन 12 महीने च दास, 1 महीना 25 दिन, हर साल उत्थे कथा करदा है। और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा कीती है, उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलदा है 24 घंटे बोलदा, उत्थे बड़ी जिंदगी है, उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहरां, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दियां संगतां नूं मैं कहा जे थानू सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है, इत्थे किसे ने अपना ओ खून डोलिया जो अमृत सी, इत्थे ओ आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24 घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, तो जरूर रस आएगा। जेडे कोई थोड़े जिहे इस मिजाज के बंदे ने उन्होंने ज्यादा रस आएगा। मैं उन्होंने कहा कीर्तनिया के कीर्तन का रस ना समझ लेना, उन्होंने कंठ का उन्होंने कला दे नहीं, ये कथा व्याख्या दलीलों का रस ना समझ लेना, यह गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है। इथों दियां मेहरां, इथों दियां लहरां ने, यह अस्थान भेद है, ये जगह दस है। इस वास्ते कहा गया जिमें जोड़े असी बहर ला के आते हाँ, कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी, जिस जगह ते बैठ के जप करना है, तप करना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है। हर घर दे जिवें किचन आउंदा है, रसोई आउंदी है, भोजन बनांदे हैं शरीर लई, हर घर दे 2 फुट जगह ते कम से कम इतनी होवे, 4 फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहेगुरु वाहेगुरु मनुख जप सके, वो जगह चार्ज हो जाएगी, उस जगह दे बरकत पै जाएगी। उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा उदे मुंह राम निकल जाएगा, वाहेगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना, बहुत सारा समा मैं थोड़ा ले गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन, जो कुछ आपने सरवण कीता थोड़े हिरदे च वसे, जो मैं थानू सुनाया मेरे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनया होया कबूल होवे, मेरा सुनाया होया। सिर्फ 1 मिनट मैं लैंदा ये जप, भावें मेरा गला हुण थक गया पर मैं 5 दफा कहना है, मैं पहले कहना है तुसी बाद च। इस तरीके नाल रोज घट तो घट 15 मिनट करना है, अगों गुरु जितना करा ले वो फिर गुरु दी मर्जी, पर कम से कम 15 मिनट दा इरादा कर लो। ते मेरा अपना अनुभव है, रोटी खांदे लगदे ते 15 मिनट ने, सारा दिन तृप्ति बनी रहिंदी। ये 15 मिनट दा जप थानू 24 घंटे मस्ती च रखेगा।
सुरूर दिच रखेगा, कल कलेश तो बचावेगा, चिंतावां तो बचावेगा, फिजूल दियां ठोकरां तो बचावेगा, मन दी भटकण तो बचावेगा। तो सिर्फ पांच दफा मैं कहना, क्योंकि गला मेरा खुश्क हो चलिया, मैं पहले उच्चारण करांगा बाद दिच तुसी, तो मैं अर्ज की जिमें घड़ियाल दी आवाज है ना, तो ना कर इस तरह करना।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दी झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

ऐसी चिंता में जे मरे, जे इस चेते च मर गया, चिंता च मर गया, चेते च आ गया, फुर नहीं है ना। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल औतरे। क्योंकि क्या जाता है सप सची, अज भी तुम देखो यूट्यूब ते जेड़े खजाना लभन जाते ने ना, मैं आप देखे वो उत्तों खड़कांदे ने ते पत्थर दे थले सप निकलदा, सप दे थले सोना पिया हुंदा। कुदरती गुरु ग्रंथ साहिब दा सच है जी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन वल वल औतरै। अंत काल जो इस्त्री सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, बेसवा जोन वल वल औतरै। वेखो अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, सूकर जोन वल वल औतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ये हुण कईआं ने ते मनना नहीं, कई इहो जिहे महल ने जिन्हां दे लोकी डरदे वड़दे नहीं, कहिंदे ते भूत रहिंदे आ। अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता, मंदर मीन्स महल घर। अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मैं जो मरै, प्रेत जोन वल वल उतरै। भगत जी फिर की बनेगा, कहन लगे कि कृपा करे रब, अंत काल जो नारायण सिमरै, जिहदे चेते विच चित आवै उस पार ब्रह्म। अंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदर त्रिलोचन ते नर मुक्ता। वेखो फुरने ने बचाता बंदा। हुण एक और एक तुक है, जदों भाई साहब तुसीं बोल रहे सी कथा उदों ही जन्म लै रही सी। मैं वैसे रब दा शुकराना करना, मैं कदी वेख के नहीं अजे पढ़िया, हंकार च नहीं कहिंदा। देखो मैं कुछ होज बोलना सी, गल चल पी भाई साहब ने चलो चित वाला शब्द पढ़िया, मेरी इच्छा सी। एक शब्द कह अजा मल को अंत काल में नारायण सुध आई। हां सुध आ रहे थे, खबर चेता आ गया। जदो चेते आया मैं कहना वाहगुरु किन्ने दयालु ने, गुरु रामदास कहने उन्हें नारायण पुत्र बुलाया, उन्हें कोई नहीं रब न बुलाया। फिर सुनो ये तुका ने, अजा मल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, ध्यान न सुनो इस गल न। अजा मल न चेते आ रहा अपना बेटा नारायण नारायण, गुरु रामदास कहिंदे परमात्मा ने चेते कीता, उन्हें पुत्र नूं आवाज मारी नारायण नारायण। पर जदों ओ वेशवागामी बनिया उस तो पहला उन्हें नारायण शब्द का अभ्यास किया। गुरु नूं पता सी भी अंदर इहदे पिया होया, जो कुछ इन्हें जपया वह चित विच पिया है, पर चित दे उत्ते वासना दियां परतां जम गईआं ने, तह जम गईआं ने। अंतले समय जदों मौत आनी है उदो अंदरली अंदरली तय पाड़ के नारायण बाहर निकलेगा। महाराज कहते अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बोल आ रहा है, मेरे ठाकुर कह मन पाए भावनी जमकंकर मार बिदारे। अजामल को अंत काल में नारायण सुधाई, जा गत को जोगीशर बांचत सो गत छिन में पाई। अंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाकै हृदय बस। ओदे हिरदे च परमात्मा वस जांदा। भाई साहब भाई गुरदास साहब दा जिक्र तुसी कर रहे सी, चलो समा नहीं अगली बारी सच्ची मैं भैन जी नूं कहा वाहिगुरु जिंदगी बख्शे, आपां कोई विषय मिथ के कथा करिए। हां जी ओदे नाल सुखण, जिवें एक है जुग जुग मेर शरीर का, नहीं नहीं ये भाई गुरदास साहब वह एक रथ वाह दूसरा है। वैसे हैरान दी गल ए जेड़ा प्रमाण दिता एक रथ एक रवाओ, ए बोधिज्म दे ग्रंथां विच आउंदा है कि शरीर रथ है आत्मा इनू चला रहा है। किड्डे किड्डे पुराने ग्रंथ बोधिज्म जे ग्रंथ। दूजी गल इहदा उपनिषद विच जिक्र है। महाराज कहिंदे आ भाई गुरदास ए नानक ए, मेरा जेड़ा शरीर है सतगुरु कह रहे आ भाई भाई गुरदास साहिब कहिंदे ने आत्मा मेरू है, जुग जुग मेर शरीर का। ध्यान ना सुनियो, जुग जुग दर्थ हर जन्म विच मेर दर्थ मेरा नहीं, मेर दर्थ आत्मा शरीर का। वासना बद्धा आवे जावे, कह लगे हर जन्म विच कोई ना कोई वासना इनू खिच के लियांदी है। यही कारण मैं कई बार सोचना वाहगुरु जाना सब ने वे, अंतले समय पता लग जाए भी ये जी जांदा पिया है। पूरा जोर ला दियो वाहगुरु वाहगुरु बोलो, पता नहीं किदी आवाज कन्ना च पै बंदे दी सारी जिंदगी नूं पलट के रख जाए। जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवै जावै, फिर बटाई है ज्ञानी होए मरम को पावे। चेता बहुत वड्डा है। अज भैन जी मैं कोई

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: बार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साथ संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलोक का निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
0: रखे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कह साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आज जंजाल विकार के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नभी खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए पल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहि समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबसे ऊंचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम।

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन समाद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर।

निरंकार है न लय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहे।

चोरा यारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खाए चले था दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कार आया कार।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू दुख सी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

तुक दारू सुख रोग पे जांच काम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो, जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सहसूस वाले।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप अब्द करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सतिये ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिये पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की वे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक समय।

दिया मूर्त कहे धन मेरा जमका डंड मुंड में लागे हिण में करिन मेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मसुर पाए ज्योतिष पावे सर कृपाणे पाणा मनु साई कहे कबीर सुनो संत मेरे।

देख संच रावत गई रहाव जलकी मछली तरवर ब्याई देख कुतरा लय गई बलाई देख रे कुतरा लय गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला घोरे चर पै चरावन जाये बारा बाहर बैल गुण कर कहत कबीर जो इस पर बुझे राम रम ते सब कृष सूझ आसा श्री कबीर जी के तिवदे अठ दो नुके सतवा एक तुका पहला एक ओंकार सरगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अग्नि कुंड रखाया दसमा समा तो राख्या मोह लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया।

अपने के काहे को चक मारे का जिस एक तुह में तेरा सोच जान देख खबर न करे दिन के बोरे ताते जन अलेखे हो सार देव खन अलो नार पुरख ने कोई पड़े हु ना कुछ बोरे जो दिल में खबर न होए अलो गए वो सड़कड़ पीता है।

आठ पैर अपना खसम ते आवो सोने की सोई रुपये का धागा नामे का चेत हसो लागा सा साप कुन छोड़े बेखने छाडे उधर मैं जैसे बड़ ध्यान मांडा काहे को गिरजे ध्यान जपंदा जबते सो नाही मन अपना रहो सिंह के भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देव खाने।

कैसे मन तरे गारे संसार सागर बेखे को बना झूठी मैं देख के भूला रे मन रहा शिपे के कर जन्म दैला गुरप दे पहला संतान के प्रसाद नामा हर बेटला सा बाणी श्री उदान जीव के कोंकार सर्व प्रसाद मृ गमीन प्रण पतन कुंजर ए दोष बनास पंच दो साध जामे ताकि केतन आस

प्रगट होवा सास हर दर्शन पाया सैन नाय बतकारिया ओ घर घर सुनिया हिरदे वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गणिया ए बेसुन के जाट रूठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइया धन्ना मड़ भागा।

तो जे अवर विसर सब जाए हर से चित रहे जरा प्रभाव न हो भी जीवन पद भी पाए रहा गोविंद प्रीत सहज उपजावे जैसी भक्त बने आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति जो समय भागा ऐसा शरण पाई जे लोचे सब कोई कूड़े की पल विचो निकले ता सरा सुख होए नानक ऐसे सर्व की क्या सेवा करे जो गुर आगे जीव तरे सर भाणा चिन्ह।

तारे जो जन सुने सरदा पर से तिहर कृपा हर निस्तारे राम मुको हर जन हर मेर प्यारे मेर प्रीतम प्राण सर्वगुण पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहा गौरमुख बड़भागे जिन हर हर नाम उदारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन

नकत हो जाता है। हटकर यंत्र सर्व निरंतर रंग रव्यो रंगड़ाता पै कृपाल दयाल कृपालता नरपैठे कर आया काल क्लेश मिटे खन पीतर नान सह समाया। गुजरी महला पंजवां जिस मनुख पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार पंज हृदय अराध्या।

मन बसै गुरमुख सह समाय। महला तीजा अंदर सह साधो कै आपे सिर तंदे मार। दूजै पाए सुते कबे न जागै माया मोह प्यार। नाम न चेतै शब्द न विचार एहो मन मुख का आचार। हर नाम न पाया

जप हिरदय सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहना नानक नाम बड़ाई होए। महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पाव वह गुणी निधान हर सुखदाता मन मसै हो मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है तन धन लगे ध्यान।

जाए। सहसा मूल न चो कई बेचा बेष्टा पचै बचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत चढ़ाए, पौड़ी जिना हुक्म नाए उनते पूरे संसार। साहिब सेवने अपना पूरे सद विचार, हर की सेवा चाकरी सचे शब्द प्यार। हर का महल तिनी पाया जिन्हों मैं बिचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे।

आया बिच ग्रह गुर बचन उदासी मैं मोह जलाय आप तरिया कोल जगत राया तन जने दी माया ऐसा सतगुरु सोई पाए जिस तुर मत कहार लिख पाया जन नानक बलिहारी गुरु अपने।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581190।

क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा? कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जांदा है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद कर लग पैंदा। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है, क्या समझ दे चाह जांदा है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी आटो बायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना। तुसी कुछ भी पुछो ते मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। सारे सवालां दा जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानदा। कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना छाना रे। ओही महामूरख है जेड़ा कहिंदा मैं सब कुछ जान रे, खाक जानेगा। ज्ञान दा ते सागर पिया है बार, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे चो एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रिया तो उच्चा उठदा, उन्हों इंद्र जीत कहिंदे ने, इन्हे जीत लिया इंद्रिया ना। नास्तिक कहिंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नू कोई होर इंद्र ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कुछ सुन के, कुछ चख के रस मिलेगा, कुछ स्पर्श करके, कुछ सूंघ के, होर भी कोई रस है ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्र ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक इस संबंध च, बहुत कुछ कहिंदे ने। इस वास्ते ऐलानिया कहिंदे पानी दी लोड़ है गुरबाणी दी नहीं, धन दी लोड़ है धर्म दी नहीं, पदार्थां दी लोड़ है परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकदे हां। पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकदे हां। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकदे हां, इंज कहिंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने पानी ना मिलिया शरीर मरेगा। वाकई शरीर दा जीवना बड़ा औखा होगा, पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी, तो मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगा। मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुआं दी तरह, करतूत पशु की मानस जात।
जिंदा तो रहेगा पशु की तरह। जी सकता है मनुख परमात्मा की याद तो बिना पशुआ की तरह जीवेगा। और उन्हां सारे पशुआ का गुरु नानक ने बकायदा जिक्र किया, भगतां ने बकायदा जिक्र किया, बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी त्यों साकत जीवें नाम बिसारी। प्रभु नूं भुला के मनुख इस तरह जीवदा जिवें सप्प।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581-1900।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हों का ऐसा कहना है कि मनुखा नू पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक पंज तरह के ही होंदे ने। ये किस्मा मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी किथे खड़े हैं। इन्ना पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनूं वो इस तरह बयान कर देने। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मा तो मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करता रहे, चोला बदलता रहे। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार, नहीं मरदा शरीर। बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं आता। लोभ सदा जवान लेंदा, अहंकार सदा जवान रहिंदा, विकार सदा जवान रहिंदे, वासना सदा जवान रहिंदी। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, हंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नू समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी, वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इनू कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है, इनू कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आउंदा, लोभ दा बंधन आउंदा, वासना दा बंधन आउंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नू बुढ़ा कर देंदी है, मन नू बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नू खत्म कर देंदी है, मन नू खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान हो गई। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा, रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं, रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604-581-1900।

संतपना की है। पैगंबर किसनु कहंदे ने, अवतार किसनु कहंदे ने, पूरन संत किसनु कहंदे ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दां विच, दो बोलां विच इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नू फकीरी कहते। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनु कहंदे ने, संत किसनु कहंदे ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारे आया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मेरे तक मिथिया श्रृंगार, ए मुर्दे नु शिंगारे आ गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनु कहंदे ने, इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनु फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिया, जन्म कित्थे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म कित्थे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे।
करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उदी मौत कुछ दे गई। उस दी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उस दी मौत नू लिया, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कठी हुंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਕੌਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਨ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਏ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਂਟ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਬਾਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਇਕਦਮ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਆਖਿਆ, ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ

क्रांतिकारी नजारा पेश कीता। हुण मैं अर्ज करा बार दी जिहड़ी ताकत है शक्ति है इनू सता कहिंदे ने। सता इह सता कई तरह दी हुंदी है, इह तान कई तरह दा हुंदा है। और इतनी गल स्पष्ट है जिहदे कोल तान नहीं उहदे कोल माण भी नहीं हुंदा। निताणा निमाणा हुंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा हुंदा है। तान दे आले दुआले माण परिक्रमा करदा है, जिथे तान होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। तान माण दोवें कठे रहिंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई तान होगा, बिना तान तो मान नहीं आता। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, निताणा निमाणा आता है, निताणी कौम निमाणी आती है, निताणा देश निमाणा आता है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते ने कमजोर मुर्दा आता है, मुर्दा हुंदा है, चलदी फिरदी लाश हुंदा है और कुछ भी नहीं है। कमजोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा विद्वाना ने, खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आप नूं पता होवे भारत विच तीन संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु सी चाणक, उने राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उनु चाणक नीति दर्पण कहिंदे ने। भारत विच हर रेलवे बुक स्टाल ते मिलदा है, बहुत पढ़िया जांदा है अजकल। दूसरा होया है धरतराष्ट्र दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसका बिदर। इहदा भी ग्रंथ मिलदा, इहनू बिदर नीति दर्पण कहिंदे ने। अजकल ए भी काफी पढ़िया जांदा है। तीसरा राजनीति दे उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। ये राजे बिक्रमाजीत दा छोटा बिरा सी। भारत दे जिहड़ा सम्मत चलदा है उहनू बिक्रमी सम्मत कहिंदे ने, राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहिब दे च वी जिहड़े हवाले मिलदे ने उह बिक्रमी सम्मत दे ने। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, ये बिक्रमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है, लंघ है। ते जिहड़ा 12वां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च है ना, बिक्रमी सम्मत चेतर तो शुरू होंदा है, चेत तो ये 12वां भी बिक्रमी सम्मत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी सम्मत ते जनवरी तो शुरू होंदा है ना, बिक्रमी सम्मत चेत तो शुरू होंदा है, उदो अंदाजन मार्च दा महीना होंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 2 12वां ने गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे च, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माज राग दे च, दोवें बिक्रमी समत दे मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद खणा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे च बिक्रमी समत नूं वरत्या है। सम्मत 17 सहस बड़ीजे अर्ध सैन फुर 3 कहिजे, भादरो सुदी अष्टमी रववारा। ये सारा जड़ी गिनती है बिक्रमी सम्मत दी। चाणक बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्ना महापुरुषां ने दस्या है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा जिथे तान होवे। तान ही नहीं ते माण केड़ी करदा है।

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदे हां, प्रभु दे गीत गाउंदे हां, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुखो काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी, उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी, उस तो दुख तो के आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मुखो काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों तके मार के कट देने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी, उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आपदा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है, और मंदिर दा जो मुख द्वार सी, उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे, औरंगाबाद रोड दे ते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए, ते आप नूं तके मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है, और कस्बे दा नां औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है, और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे अज बनिया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन, तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है, और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ये अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ये अजूबा कहिंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नूं जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप

धन है जैमुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा ते कहना की एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने प्रभु सिमरन करना है ओदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र विच भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तों बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए ते आप दे भक्ती भाव दे संगीत ने जद श्रोतियां दे मना ते अपना प्रभाव पाया ते आप दे आले दुआले बहुती भीड़ इकट्ठी हुई ता उपराणा झगड़ा शुरू हो गया जिन्हों कहंदे ने सत ते सता दा झगड़ा। वक्त दे सुल्तान सिकंदर लोधी नूं इह गल रास नहीं आई कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ इतना इकट्ठ। इस तों सताधारी कई दफा खतरा महसूस करते ने कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ क्यों है ते ए भीड़ किसे वक्त साडे लई दुखदाई साबित ना होवे। लिहाजा श्री नामदेव जी महाराज नूं पकड़ के हिरासत विच लै लिया गया और सुल्तान ने कहा कि मेरे घर दी कपिला गऊ मर गई है, इस नूं तू अपनी शक्ति नाल जिवा दे ते तैनूं छड्डांगा वरना नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने ए जन्म ते मरण प्रभु दे हथ च, हमरा किया कछु न होए, कर है राम होए है सोए। ए जन्म ते मरण राम दे हथ दे च है न के मेरे हथ दे च है। सुल्तान क्रोध दे च आया, गुस्से दे च आया और जेल दे च नामदेव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया। दहली दे पतवंतिया ने आखिर सोचिया कि कीमती इंसान है, भगत है और ऐसा ना होवे कि राज हट दे सामने इस दी कीमती जान चली जाए। तो सारे पतवंते सुल्तान नूं समझान लई गए, जद भी कदी राज हट ते भगती दा हट आपस दे च टकरांदा है तो वाकई राज हट लई एक कयामत ही नाजल होंदी है। ऐसा आदकाल तो चले आ रहे। भगत हट करदा है अपनी सच्चाई ते, पर सताधारी हट करदा है अपनी सता ते, अपनी झूठ ते। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहंदे ने, तुरा तर्क ताजी ब मकरो राया, मरा चारा साजी ब सिदको सफा। मैं सिदक ते खड़ा, सच्चाई ते खड़ा, सफाई ते खड़ा, ए सुल्तान तू झूठ ते खड़ा है, फरेब ते खड़ा है, फरेब ते खड़ा। तू इस तो अगां पिछा नहीं होना चाहता, है तेरा हट है, पर सच ते मैं खड़ा, मैं भी इधर उधर नहीं होना चाहता, ये मेरा हट है। सत ते सताधारियां दी आद काल तो ही नहीं बनी। सताधारी सतवादियां दे गुण उन्हां दे आले दुआले श्रद्धालुआं दी भीड़ नूं वेख के औखे हुंदे रहिणे, ते सतवादी सताधारियां दे झूठ नाल कदी सहमत नहीं हुंदे रहे। तो नामदेव भी सहमत ना होए। सुल्तान ने कह दिता नामदेव नूं करड़ी तों करड़ी सजा देंगे। लेकिन जब दिल्ली दे पतवंते सुल्तान दे कोल पहुंचे ते कहन लगे एक कीमती मनुख है, इस दी होंद मनुखता दी तामीर विच सहायक होंदी है, मददगार होंदी है, इते चंदन दा वृक्ष है, चलदा फिरदा खुशबुआ वंडदा है, शीतलता वंडदा है, इनू छोड़ दो। सुल्तान कहंदे ने मैं किसे कीमत ते भी नहीं छड़ना, एक कोई शर्त है, मोई हुई गऊ ए जवा देवे। पर मोई हुई गऊ नूं जवान तो नामदेव ने इनकार कीता है। दिल्ली दे धनाढ़ सेठा ने भगता ने आखिर सुल्तान नूं कहा कि नामदेव दे शरीर दा जो वजन है इतने वजन दा साडे कोल सोना ले लो, चांदी ले लो, नामदेव नूं छड़ दो। ता सुल्तान कहिंदा है माल लौ ता दोजक भरो, मैं दोजकां विच नहीं जाना, मैं धन माल लैके इस काफर नूं नहीं छड़ना।
तो सारे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, Guru Har Gobind Sahib Ji, छेवीं संतान ने, छेवीं संतान तां शब्द वरते है, हजूर दे आगमन तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे चार बेटे और एक बेटी है, बाबा गुरदित्ता जी, बीबी वीरो जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी और बाबा अणी राय जी। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का आगमन श्री अमृतसर साहिब की धरती ते होया है। हजूर महाराज जी का जिस जगह ते आगमन होया उथे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अमृतसर साहिब रहिंदिया अपनी रहायश रखी ते उस अस्थान नूं असी शब्द वरतने गुरु का महल। अमृतसर साहिब दी धरती ते उस गुरुद्वारे दा नाम गुरु का महल है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा आगमन अमृत वेले होया है। इतिहास कहिंदा है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दरबार साहिब आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन ते उस वक्त समाप्ति वेले सेवक ने जाके बेनती की, महाराज आप जी दे ग्रह विखे साहिबजादा जी दा जन्म होया है। महाराज है गुरबिलास पातशाह छेवी भी जेडे शब्द लिखे ने, महाराज जी ने अपने इस बेटे नु हथां चुकिया उस वक्त जेडे शब्द कह, भावे असी श्रद्धा नाल देखांगे हर गल स्वीकार होवेगी, जे तर्क नाल हर गल नु कट्टन दा यतन करांगे ते कुछ भी सिद्ध नहीं होवेगा। महाराज जी ने अपने बेटे नु हथां च पकड़िया, इतिहास कहिंदा अपना सीस चुकाया। भाई विधि चंद जी पुछदे ने, महाराज इस पुत्र नु इन्नी नीज नाल देखिया ते सतगुरु दे जेड़े शब्द सन ओ ए सन, ए मेरा बेटा दीन रखक संकट हारन। कुछ विद्वान कहने दीन बंधु, एदा मतलब गरीबां दा रखवाला है ते जितनी मर्जी वड्डी तो वड्डी मुसीबत आ जाए सच ए वे मेरा पुत्र वड्डे तो वड्डे संकट नु विकार कर देवेगा। ते साडे मैं थोड़ी जी बेनती आप नु करनी, खास करके सरदार कपूर सिंह होना ने एक वारी जलंधर रेडियो ते एक लैक्चर दिता सी, है ता थोड़े दे मिंटां दा सी ते मैं ओनू तां आधार बना रहा क्योंकि जिस विद्वान की खोज हो भावे वह दुनिया तो चला भी जाए ओदा जिक्र जरूर करना चाहिदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी बारे शब्द कहे सन ए संकट हरन दीन रखक। चलो ए शब्द तां ने साडे कोल हिस्ट्री दे ते इस विच आ भी कह सकने भी कवि ने भावना न लिखिया होवे, पर जेड़े बचन आप जी रोज सवेरे शाम दुनिया भर विच जिथे भी सिख ने गुरुद्वारियां विच घरां विच जिथे नेमी प्रेमी रोज अरदास करदे हा, गुरमुखो करोड़ां सरदालू रोजाना गुरु तेग बहादुर साहिब नूं याद करदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह दो बचन कहिंदे आ कि एक मेरे पिता जी नूं, चलो ते शब्द उहनां तेग बहादुर वरत्या कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं कोई भी याद करेगा सब तो पहला उन्हां दी याद विच घर विच किसी चीज की कमी नहीं, नौ निधा ने। दूसरी गल कि जिथे पिता जी नूं कोई याद करेगा पिता गुरदेव उहदी सहायता वास्ते जरूर पहुंचन। असीं रोज पाठ करने आ तेग बहादुर सिमरे, इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहिब नूं चेते कीते आ। उंज मैनूं पता है नौनिध दे अर्थ गुरबाणी विच बड़े होर भी डूंघे, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, प्रभ का नाम शब्द वरत्या। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इत्थे वचन कीता, कहन लगे ते थोड़ी आवाज घट कर, तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे ताए, ताए दर था पा समझने दौड़ के। पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं याद कोई करे घर नौ निधियां ता के आउंदियां ने, ते अगला वचन कीता सब थाई होए सहाय। जिथे भी कोई याद करद है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हर थां ते सहायता करन वास्ते पहुंचदे। दास एक होर बेनती करे कि गुरु नानक साहब जी तो बाद जे दूर थोड़ा जा होर गया ते गुरु हरगोबिंद साहब, पर गुरु नानक साहब जिन्ना नहीं सबर, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हां दा पूर्व रटन के जिन्हों आपां पटना साहब ढाका असाम दा जिक्र करने। गुरु तेग बहादुर साहब दी परवरिश अमृतसर दी धरती ते शुरू हुई। उस दिन मैं एक बेनती की सी कि महाराज नू सुते सिद्ध बचपन तो ही बैराग सी, बिरहा सी, पर एक घटना ने उन्हां दी जिंदगी ते बहुत गहरा असर किया। वह घटना सी अपने वड्डे वीर बाबा अटल राय जी का चलाना, क्योंकि उन्हां दा चलाना श्री अमृतसर साहब दी धरती ते होया। गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने कदी भी, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब, गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने कदी भी तीन पातशाह को जताया ही नहीं कि मैं वड्डा हां ते गद्दी दा वारस मैं हां। गुरु हरगोबिंद साहब दे बेटे ने, पर उन्होंने यह नहीं जताया कि मैं हर राय जी तो वड्डा हां। नहीं, जो पिता गुरुदेव ने कह दिता कीरतपुर साहब रहा। इथे एक बार अर्ज की सी महाराज जी जदों भी संगत विच आउंदे सन एक तो नेत्र नीवे करके, क्योंकि साढ़े कोल इतिहास दीआं घटनावां ज्यादा उच्चा नहीं सन बोलदे, चंचल ताई कदे नहीं सी उहनां दे नेड़े आई। सब तो मैं पहली गल कीती विश्वास, जां कह हृदय विश्वास पर बाबा आया तत् ज्ञान ते समान प्रगटाया। एक उदाहरण होर दे के विश्वास की है। गुरु ग्रंथ साहिब धन्ना जी दे तीन शब्द ने, चलो सज्जन कई चार कहिंदे आ, चौथा गुरु अर्जुन देव दा। पर भाई गुरदास साहिब ने, मैं उस जगह ते कथा करके आ टौंक धुआन पिंड, भगत धन्ना जी दी अजे भी पैली हैगी है जी, उन्हां दे नां ते कई बिघे जमीन बोलदी। जदों उस पिंड च मैं गया ते सवेरे अमृत वेले नेत्रिम तो बाद बाहर निकलिया, तो मेरे मन च इको ख्याल ए टकराया कि जेड़ा पंडित पूजा करदा सी उते विद्वान सी, धन्ना ते पढ़िया नहीं सी। उहने रोज लंघदा मझां गावां लैके जांदा, फिर उसने वेख्या भी ये बंदा रोज इशनान करांदा है, ये दीवे बत्ती धूप बत्तियां बालदा। उते भाई साहब ने लिखिया बामण पूजे देवते धन्ना गऊ चरावण जावे, धन्ने डिठा चलते पुछे बामण आख सुनावे। उन्हें क्या की करना, कहिंदा ठाकुर दी पूजा करे जो इच्छा सोई फल पावे। याद रखियो ओ बंदे ने कहा भी धन्या ए ठाकुर दी जेड़ा पूजा कर दे, सवाल है जी उन्हें पत्थर दी पूजा की। मैं एक बेनती तुहानु करा, प्लीज मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जिवें बार मुखी वक वक तलीम दे पड़ा ने स्टेजिज ने, इसे तरह स्पिरिचुअलिटी विच भी वक वक पड़ा आउंदे आ। उदाहरण दे तौर ते असी बच्चे नूं स्कूल पढ़ने पाने, जे अंग्रेजी च पढ़ना होवे ओ सब तो पहला, पहली गल ते अजकल पहला पढ़ांदे कोई नहीं, ओह कहिंदे नहीं भी खेड खेड के आ जांदा। ओ बच्चा जेड़ा अज फीस देने पै खेड के आ जाए, इस तरह है ना जी। ते जे दसवीं च पढ़दा खेडे आपां डांग चुक लैने, अगला कहेगा जिदन पढ़ने पाया उदन ते खेड तो शुरू होई सी, काम बैट बल्ले पए सन, गेंदा पईआं सन, झूठे लगे सन। जे बंदा पीएचडी करदा कहे मैं तां बैट बल्ला करदे, कहणगे फड़ इहनूं बैट नूं ठोको इहनूं, इहदे ने कुट्टो विकटां ना लैणा, वी तैनूं पता नहीं इन्ने पैसे भरे आ। पर उह कहेगा जदों मैं शुरू होया उदों तां बल्ले तों शुरू होया। उहनां कहा बेटे उदन तैनूं दसणा सी तलीम की है, ए फोर एप्पल दा मतलब इह नहीं कि एप्पल ही केवल ए तो बनदा, ए तो तां हजारां शब्द बनदे पए आ, एप्पल तां दस्या सी तैनूं ए दी समझ पै जाए। अध्यात्मिकता च जदों कोई सरगुण दी भगती वल तुरदा है उस विच उहनूं कई वारी दृश्य नूं सिरजदा। गुरु अमरदास नूं सारे विद्वान मानदे आ, 19 साल वह गंगा इशनान करदे रहे, उहनां दी दृष्ट मान ते इक भावना सी ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਘੁਣਤਰੀਆਂ ਤਰਕ ਸ਼ਰਕ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੀ ਜੱਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦਣ, ਠਾਕੁਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਤੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨੱਕੇ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜੇਗਾ, ਢੱਗੇ ਨੀ ਤੁਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪੱਠੇ ਪਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਹਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਨੀ, ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਨੀ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਠਾਕੁਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਕੇ ਨੁੱਕੇ ਮੋੜੂਗਾ। ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ,

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहिगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहिगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असि आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े हुए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दी। चंद्रमा जदों इह अपनी थां सारी रात बदलदा है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी आ गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी उहदी गर्दन झुकना भी उहदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर उह किहड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण उह दिस नहीं रही पर उहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी का सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी का ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टेक हो के ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खोन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विच ओहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पाण लग पिया ते अपने पंख उहने पूर्ण तौर ते खिलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचण लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओहदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: क्या हाम जी अजंत बेचारे बरन साके एक रोमाई, ब्रह्म महेश सहित मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाए, क्या कथी है किसे कथन ना जाए, जह जह देखा तह रहा समाई रहाव, जह महा भयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अभिनाशी करता पतित पवित एक निमुख जपाइय, अचरज सुनियो प्रताप भेटले, संत चरण चरण मन लाइय, ਕਿਤ ਵਿਧੀਐ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਸੁਰਜਨ ਕਿਤ ਜੁਗਤੀ ਤਿਹਿਆ ਰਹਾਉ ਜੋ ਮਾਨੁਖ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਿਸ ਕੀ ਲਈ ਲਈ ਫੁਨ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੋਹਿ ਟੇਕ ਤੇਰੋ ਏਕ ਨਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੋਹਿ ਟੇਕ ਤੇਰੋ ਏਕ ਨਾਈਐ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੰਤ ਸਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਰੀ ਧੰਦ ਬੰਦ ਅਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ ਅਵਰਕਾਜ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ ਰਹਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਾਰ ਕਨੋ ਅਨੰਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਹਰੀ ਐਸੋ ਹਰ ਰਸ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਉਲਟ ਧਰੀ ਪੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਭਰੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਜਾਨ

काही परि कर है कराव है मुकर पाव है पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ। कात विहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाई जरे। आंधकूप मह परयो प्राणी भरम गुब्बा